0: अपनी पहचान।
1: आपकी पसंद, आपके एहसास और आपके लम्हों की खूबसूरती, सब कुछ एक ही जगह, जहां हर प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए। रेडियो अमन 88.4 खड़क, आपकी अपनी आवाज।
2: आप सुन रहे हैं FM 88.4 अमन रेडियो करम।
3: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

हजानु साहिबानु वापस दारातलू लड़े दवामदार अदा रातलून की मालिका लपारा द कम न कम माहाना उजरत 5,500 रुपए मुकर्रर के दो सफारिशात शिवी दी बजट 2023 और 24 जे दाद के द खरीद और फरोख बांधी द टिक्स के दलवी कमी तजुजुन वर्कली शिवी दी पानरीवाल कच पानी गैर कानून तो गबांदी मिश्ता हिंदुस्तानी वगड़ी मुख्तलिफ मुल्कों द पारा योलवी वबाल जोड़ शिवी दी योबला खतरनाक पेखा अमेरिका की यौतन दखपल को शपक तना वजली दी वाले बखपल हम खुदकशी करेदा द मोदी द नाकाम पालसोल अमला पर हिंदुस्तान के जवानों तहरीक डिर जात अंदेख मंचवे दे मोदी डिर जात परेशान दे रातुन के बजट के तरीकियाती मनसूबों पारा वो सवा सलोर 500 अरब रुपए मुख्तस कवलो तजवीज बरकले शिवे दे पेंडे की देवकोर नाश पक 500 लाख रुपए अगला शिव दी दगला दगतन खपल उर्वार खतले दे चार सदक की वतन द वादना द इनकार बांधी खपला चाचू अजलिदा वजीर आजम शहबाज शरीफ दनवे कारोबारी औकात व मंजूर करदा शादी हालूना रेस्टोरेंट बा पासटेम प्रानिस्तीशी और पासटेम बा बंदी की ईरान और अमेरिका तरमंजार राबिती खत्म शिविर दी मुजाकिरात शुरू दी द डोनाल्ड ट्रंप सदर वेना द ट्रम्प द गैर तजुर्बाकार इतिहादी कायम मुकाम इंटेलिजेंस चीफ मुकर कर शिवे दे कमची और ना अहला और बगैर तजुर्बा खोद शिवे दे और द क्रिकेट पा दुनिया की पेट कमिंस जवारिबिया द एशियन सीरीज द पारा अखल आई पी एल कंट्रिक्स ना तिर शिवे दे वैली दीच एशियन सीरीज के बाद बरखाखलम दगचनूर खबर ना और यो वड़ा डॉक्यूमेंट्री हम द नन्हे अखबारी नड़े वर खदा उस लांदे को द खबरों तफसील और तजी ही लदा चेतर पायरा सरपादिशे सिंह जी तोस्त मालूम दा चे दहजानु साहिबानो वतन त वापस रातलू लड़े दवामदार दा तेर वक्तन की तोस्त मावेलू चे टोल ठाल अगा अतल असलका आजमीन चे सुमरदी हज कौन की सुमरदी या दहज चे सुमर इरादे लरुन की दिया अगा टोल ठाल चे कमदे मका मुआजमा ता ब्या मेना ता ब्या अरफात ता मुख्तलिफ किस्मा दा हज मनासिक और दहगी रसूमात अदा कौल दा हल तरसीदलू द कुर्बाने द हलाले चे कम अगा निजाम दे या कम मनासिक थी अगर शिव दागे रुस्तो बाकायदा चिकम द दिन अलावा द मुख्तलिफ किस्मा चिकम अगा मनासिक थी दहज अगा अदा कर शिव दी और वक्तन फ़क्तन द मई पा 31 नेटा बांधी या बखास तो गवानी द जून पड़ुम्बे नेटा बांधी द वापसी द हजियानु साहिबानु द रातलू अगलड़े पेल छिवेदा द टूल अखरीब चिकम द हजियानु साहिबानु कम वक्तन पूरी या कम वक्त पूरी चि हजियान साहिबान वापस पल मल्क अफगानिस्तान था पाकिस्तान था नूर हवाजन तराजी खुपाई की पाकिस्तान द चिकम द हजियानु साहिबानु द वापस अखरी रातलू लड़े दा नगब अखरी परवाजन चिकम दी द जून पा 15 मजहबी चारो तर्जुमान तरमखा खबर पदरी रोजो के सिर्फ और सिर्फ पदरी रोजो के 2,000 यो से पंजोस हजियान साहिबान मकम करमे नवा मल तो वापस रागली दी कमची अत सवा दो दृश हजियान मदीन मुनवरी तो वापस रसीदली दी अल तक द बसन बशकल के चूंकि दोबारा अखबल रिहायशगा अखबल जैत रसी रुस्त बदागे हजियानो रुस्तो जिकम दी यो अयाजर नजियाद सरकारी हजियान मरहलावार मदीनी मुनव्वर रसीदी दी पाई किताब इस्तेमाल टूल नावल द खबर अकड़े वा चे कम सरकारी कोटा या स्कीम मानिकम खलक तिली दी सरकारी तनान चिकम मौजूद दी नागी के टूल टाल चिकम दी सो यो लाख या 71,000 दासी समथिंग दगा टूल खलक थी चाग तिली दी सरकारी कोटा बांधने तिली दी हज जुनुमा द जून तिरछी मनेटे बगैर से दबक पे नाराजी यानी माता सुसिंगो वो टूल टाल पविष्ट मनेटा या पदिष्ट मनेटा यानी द दिरछी जून पूरे टूल टाल बगैर दस वक्फे न चिकम दी दगा परवाजुन पाकिस्तान तराजी और द हजियानो साहिबान द लड़े कड़े वदा मुकम्मल तरीके बने ختم شي خو بل دلته یو خبر دادا چې سلور او یا لکا او یا زرا د زناورو قرباني شوی دا ټول ټال چې کوم ندی مالیت لګولې شوی دی ناغه 8.5 ارب روپې لګولې شوی دی مطلب دا محل چکم دی پر سعودی عرب کی چکم دا عرفات نرستو چکم دی اغا دا حج حجانو صاحبانو کمی قربانی کردی دا غټ اختر دا پارا چکم گڈان یا چکم

0: नेक्स्ट कॉलर ऑफ द शो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मो पो ख्याल नुमाजी दे तो वो शे सही नुम मिलवी जी तो तरफ न
1: कना
0: कदी तो उमी शेल बिया बिल्कुल अनेरी और दुन की आवाज दी और खा का बदी नुम छे न जदल बे खुद तो पा दो कना जी बिल्कुल अनेर बे या पके वही शे नुम दे बिल्कुल रेडी है था रिजु नुम ना सही था छुट्टी है ना खोना कई खबर है दगा से लागी बिल्कुल आवाज ना दगा से लागी जदा छुट्टी है ना दो बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाटी दर तो हुए छुट्टी है ना खना छे सरंगी तो सी तबियत से हाथ मिजाज अच्छा तय खनन में तो चलो चलो बस ब्याह खुद शो कर सी काल दे पके वकड़ाओ काल दे मिलाओ खुशवर डायरेक्ट डायरेक्ट कने कने देखो देखो बे नंबर नहीं के ना दम रजियात काल जरजी चे अच्छा अच्छा बस चलो सही अच्छी मिलाओ शुशा छुट्टी है ना अवाल आसान ना दे मुँह महिला सूर्य दिलाऊ का ना चलो ब्याह अच्छा अस्सलाम वालेकुम ना ना दे पर मतलब मख के ना दौड़ दलिया ना दे पर मिनट तो अस्सलाम वालेकुम आया मैं चूस ब्याह ब्याह खबर सार नर बंदे कहे स्तर है सख सार ना ब्याह खबर न शकोले अच्छा अच्छा चलो बेस यार कहना था दरखास्त तो बोली का अच्छा अच्छा जगह खुदा करक की रोशनी दुकान है तो सीधे आज अच्छा अच्छा जगह मुझे मुख पल मोटरसाइकिल था लाइट खाना दिला गया वाला सही था जब तैयारी की कुर्ता सा इशपे तो सी लाइटू ने लगा वाली विशा तो सिरणों का वही बस दा खबर शोला खर्चे न बाचियो चलो सही तो छुट्टी है ना यो जहान मन का चीता लतीफा दिर सी के
1: ना
0: अच्छा अच्छा चलो सही तो बस सबो तो ब्याह के उस चलो सलाम दो लजी सलाम दो वाला जा ओके वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो वेरी मच यो जहान मन

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।

0: ओके जी वेलकम बैक। बैकग्राउंड के साथ सॉन्ग और है तरफ तबीसू से फरनो 27-291-292 गोरु वो फर्स्ट कलर छे मिस्टर काल दे लारे सोक दीजे जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोक रो खबर की दी किम जोइना
1: नादिया खबर कम तहते नसरतिना।
0: अच्छा नादिया खरे के तहते नसरतिना। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द प्रोग्राम, वेलकम टू द रेडियो स्टेशन, वेलकम टू द हस्बे जायका तोस्ता डैड।

0: सो गौरव यो काल के ना कमेंट और सरिष्ठा जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सो कैसे खबर की थी किम से ना जी। वेलकम टू द शो टू द प्रोग्राम के डेडो वेलकम हर कल है जी। अलावा करम द शिगड़ी तो से शयो। हेलो आवाज में दिरसी जबे को ठीक ठाक है शोर सर और वैशो तो सर उबड़ी यो जहान मनाने कहा दे तो से शोर सर और वो तो से काल हम वके पके यो जहान मनाना थे कि सो वेरी मच वाला हो तो से डेर डेर आगा सुन हम साइलेंट अवरी दुन की दी हमोश अवरी दुन क्या यो जहान मनना चाहिए काल वके गाना ब्या हो डेर डेर मनना बस दा कले कले खोरा कह दे तो से खुशहाल दे पर है ना नूर अगा दगा सीवी तो से तो टोलो था पता लगी कहना दे तो से एंटरटेनमेंट दे पर है दे तो से खानदो दे पर है ना नो अगा मतलब मुझे कले कले से खबर है रूर शाह जी जी भैया बोला
1: जी भैया कौन सा तो चली हो कहना हम्म भैया और तो मदे रे
0: बस दगा सीवी के ना कले कले सर वीच सड़ाई नवी जोई तो लूट से आसे खपा खपा भी ना
1: जी बस
0: हम्म अच्छा सही दार तो है सिस्टर शोगान जिसो रदी दा शेदे मने लागे दे रेडियो अमन करेक्ट जिसो रखा शोगानी दी मतलब दा तो से और वाई दा शेदे मने लागे
1: यान में जिसी तो उद्दा कचर में गा शोगाना ना नू वे कचर से ना कचर बेल बेल डाले मो फिम ने वीडियो जोड़ी करी पेंडे शकल के जोड़ी ये वार जी मलियास के बल बल लोए मजाक।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा सही मतलब जी तो से सर इकट्ठा शाय भी अदा से मलियासू ना कवाए। हाँ
1: जी भैया बोला हुई की मुता रात भी प्रोग्राम दे मरा खान के कल 50 लाख रुपए में डाले बोला हुई की मुता तरीक भी प्रोग्राम हां हां देरी कल कल जन बके शाख से हुई जी कल कल जन बके शाख जी ते मोल आर जमाई दख पल खोल जन तो मन ली जे दे दवा और जे दवा ला
0: शाख मा पे कवाई सही दे गया ना। बस देखो मतलब इंसान दे ना इंसान मिजाज दे मूड दे चाहता सरंग पैटर्न प्रोग्राम खानवीर कही चाहता सरंग है ना
1: भैया वाला की फाटा को
0: जी जी वका
1: मतलब जो तरह लग गया तीन सा देश मोर रही थी बची मोरी तो मोरा टेंशन के दाग में मतलब मोरी लग गए डॉक्टर ही तर वस्तु डॉक्टर ही तर गल ये बाज सब मसला है रे तेरी दाग रे मो मसला मसला दे दे दे।
0: अच्छा दाई यही जी पिंजा देश हां
1: जी भाई जानवी तुम कचरो कल डॉक्टर तेरो कल डॉक्टर भी तो वो कर डॉक्टर के जो गलत से ना आराम से पिंजा चलवेशो
0: सही सही सही था खुरजाने टेम रुत रभी ही काम दा शाह इस जी सत्व दिना उखाना टिक्षला चाहता सालोम सिस्टर था। ओके जी आवाज दे रुना कट कीजिए टिक्षला
1: सुमैया नास्ता
0: ओके जी सुमैया नास्ता टोल सिस्टर सलूमुना उसे काल का वाले यो जहान मनना

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नई बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी ये खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345-93-32-580।
1: मसाइल का हल हो या सेहत का राज, बिक टू बिक हो या खबरें, रेडियो अमल लाता है आपके लिए बेहतर से बेहतरीन नशरियात। सुनते रहिए रेडियो अमल 88.4 की नशरियात। रेडियो अमल नेटवर्क, जवान रंग अमल।
2: दिन हो या रात, खुशी हो या तन्हाई, हर वक्त एक आवाज साथ हो, रेडियो अमन।